मैं उड़ते हुए सूरज से मिलाता हूँ निगाहें, मैं गुजरे हुए शब की मातम नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम टू द ऑल द क्यू लिसनर्स ऑफ रेडियो अमन 88.4 टांक, आपके मेजबान अंशु भाईचान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है और तमाम सुनने वालों को बहुत ही प्यारा सा मीठा सा जलेबी वाला सलाम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे जनाब। बिल्कुल जनाब सलामुना निकिल एहतरामात आंसू रोड अनस पता खिदमत के हाजिर दी। उम्मीद रम चितान से टोल बहम छोड़ रोह पयो ता प्रोग्राम पता सो खिदमत के डेली डेली 4 बजे रमाख लो 5 बजे पूरे खलील ताबे शवान द किसन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान खसूसी टाउन से रपेश कवि आनंद यानी कि अंशु भाईजान पता सो खिदमत के हाजिर दे दा प्रोग्राम किसन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान खसूसी टाउन से पता सो खिदमत की पेश करूं। बिल्कुल जनाब केसन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान यानी कि केसन नेचुरल्स पाकिस्तान कुमचे कुमचे द तासो सेहत दफारा तासो मखकुला दफारा जो दासी प्रोडक्ट्स देश रवि छे तासो मखम खुलवी ओवर सर छे तासो सेहत वाले सर खबर वकु मतलब छे तासो वजन ज्यादा छवे दे आगज मय खयान दे आगज मबरुना सुक छे वाई छे अनस भाई जमुंग छे कम वजन दिखना ज्यादा छवे दे। बिल्कुल जनाब तासो वजन छे ज्यादा छवे भी कतासो वजन ज्यादा कमल वाणो तासो दबारा केसन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के दासी प्रोडक्ट्स मौजूद दी कुम छे द तासो वजन ज्यादा विभा कम विभा छे तासो हासिल कवले सो टांगे हर किस्म कॉस्मेटिक स्टोर वजन स्टोर ना। बिल्कुल जनाब जो बहने मेरे भाई मुझे जहाँ जहाँ से भी कहाँ से भी सुन रहे हैं या सुन रही हैं उनको वेलकम जी आयनु पखेर राखले सच बिस्मिल्ला सजना मेरा किठरे न लठरे सारे हाथे सारे चैसू सोने अल्लाह तआला। बिल्कुल जनाब आप इस वक्त मुझे रेडियो अमन 88.4 टांक और ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान की फ्रिक्वेंसी पर बिल्कुल लाइव और बराह रास्त समात फरमा रहे हैं। अच्छी तो बिल्कुल जनाब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पीटीसीएल नंबर में आपको बताऊंगा आपको सर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एसएमएस नंबर भी मैं आपको बताऊंगा जी आपने RAT स्पेस लिखकर 8583 पर हमें मैसेज करना है और हमारे शो का हिस्सा बनना है जी। रेडियो अमन 88.4 पर आज मेरा पहला शो है सो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नई नई आवाज़ जो है ना कहाँ से आ गई है तो न सुख दे ये नया बंदा जो ये कौन आ गया है कहाँ से आ गया जनाब तो मुझे अनस कहते हैं आपको क्या कहते हैं आप हमें बताएंगे 0300 माजर चाहूंगा जी 0963-511-488 पर 0963-511-488 पर आप हमें कॉल करेंगे ये हमारा पीटीसीएल नंबर है आप पीटीसीएल नंबर के जरिए हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्सा कर लेंगे ठीक है जनाब 0963-511-488 पर आप हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो आप 0963-511-488 पर आप हमें करेंगे और अगर आपने SMS करना हो हमारे शो का हिस्सा बनना हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छे आपने RAT लिख कर स्पेस लगा कर आपने 8583 पर यानी 8583 पर आप लोगों ने मैसेज करना है और हमारे शो का हिस्सा बनना है जी। बिल्कुल जनाब डेरे वालों कैसे हो ठीक हो तभी ऐसी ठीक है उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे और जो है ना आज जुम्मा का दिन है और आज आप इंजॉय करेंगे। वैसे भी डेरे वालों के लिए जुम्मा का दिन जो है वो ईद से कम नहीं होता है तो बिल्कुल जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं और SMS भी करेंगे। सो जनाब ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में मैंने आपको पहले भी बताया कि केसन नेचुरल पाकिस्तान की खसूसी टाउन से पेश किया जाता है डेली 4 बजे से लेकर 5 बजे तक खलील ताबे शवान आपके साथ रहते हैं और आज मैं आप लोगों के साथ साथ हूँ ठीक है जनाब। केसन नेचुरल पाकिस्तान के एक ऐसा नाम एक ऐसा एतमाद है जो कि आपके चेहरे को खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप को सेहत के हवाले से मजबूत बनाने के लिए एक अहम मकाम रखता है ठीक है जनाब। और बिल्कुल जी दा प्रोग्राम पसासो खिदमत के द केसन नेचुरल पाकिस्तान खसूसी टाउन सर पेश करूं लगे आयो। बिल्कुल जनाब दा प्रोग्राम खसूसी द रेडियो ओमन 88.4 टांक ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान पर फ्रीक्वेंसी बने तासो बिल्कुल लाइव और बराह रात चे तासो वार भी जमुंगा दा प्रोग्राम। बिल्कुल जनाब केसन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान यो प्रोडक्ट से कम तवीले की गी केसन ताकत प्लस युद्धा से ताकतवर और मायारी प्रोडक्ट देखे हर्बल शैन जुड़ शवे दे सीधा जी अगा खोयान दी अगा वरुणा सुख छे वाई छे।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप अब हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की स्टूडियो से बिल्कुल लाइव और बराह रास्त और साथ ग्लोबल एफएम 91 इंडिया का स्माइल हॉल पर आप हमारा शो बिल्कुल लाइव और बराह रास्त समाप्त फरमा रहे हैं। तो बिल्कुल जनाब, आप हमें जोन करेंगे 09635114888 पर आप हमें कॉल करें और SMS के लिए जो है 8583 पर आप हमें SMS कर सकते हैं और जो है ना हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। जी ठीक है भैया, जी ठीक हो गया। तो बिल्कुल जनाब, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में

बेहतरीन है ताकत प्लस फार्मूला। ठीक है जी, ताकत प्लस फार्मूला एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है, अगर वो मेरी बहनें वो मेरे भाई जो कहती हैं कि हमारा जिस्म जो है वो कमजोर है, दुबला पतला है, तो आप किस नेसेस पाकिस्तान का जो न्यू प्रोडक्ट है आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं या कर सकते हैं और अपने आप को जो है ना आप खूबसूरत बना सकती हैं, अपने जिसामत को खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल सुना को दकाल दपारा नंबर दस रनोर के जी एस एम एस दपारा हम औकाल दपारा हम 09635114888 बने तासो काल दा खबर ले सुची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो बिल्कुल जनाब कॉल जो है आपकी ड्रॉप हो चुकी थी, जो एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल जनाब कॉल जो है वो डबल हो जाती है, सो इंतजार किया करें, जब एक कॉल मिल रही हो तो दूसरी पीछे कॉल ना मिलाया करें। ठीक है जी, 09635114888 पर आप हमें कॉल कर सकती हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकती हैं। साथ एसएमएस के लिए जो है आपने RAT space 8583 पर आपने मैसेज करना है और हमारे शो का हिस्सा बनना है।

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।